0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, TRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों

0: बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेब 347.6 MHz या 873 kHz से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। क्या नमरीत

0: तेज प्रताप वाला अते क्रियाशील इंसान इकला ही समाज विच सैकड़े बुराइयां नूं खत्म कर सकता है। लोड़ तां सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति दी है।
1: ਏਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋ ਹੁਣ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਾਧਨਾ।

एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ

0: प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गेङ्गटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेङ्गसिंह तवाङ्गः, केन्द्रीयपूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचितसमीक्षाव्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीयसमीक्षाप्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपुस्तिकानां स्कैन् इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन्नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊनगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायण्ट्स् इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स् इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल् मार्शल् इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਏ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा है कि भारत पछमी एशिया विच शांति स्थापित करन विच वड्डी भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने संबंधी मामले च एक मुख साजिशकार PV कुलकर्णी नू गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कंपलैक्स नू हिंदू मंदिर ऐलान दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत लई कई उपावां दा ऐलान कीता है। हलवारा हवाई अड्डे ते एयर इंडिया की पहली उड़ान दे आउण नाल पंजाब दा लुधियाना भारत दे व्यापारक हवाबाजी नैटवर्क नाल जुड़िया। पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ च ट्रिब्यून चौंक फ्लाईओवर लई दरख्तां दी कटाई ते रोक लगाई। चोन कमिशन वालों केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच वोटर सूचिया की विशेष तीबर सोध 15 जून तो करवाउण दा ऐलान। बैंकॉक च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन विच सात्विक साईराज रैकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी सैमीफाइनल च पहुँच गई है। गांधीनगर विच एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विच हरजिंदर कौर ने कांसी का तमगा जितया।

घोषित कर लिता जी। दोस्तों ये कहानी सानू छोटी जी कहानी है तो सिक्ख्या सानू बहुत वड्डी दे के जाती है कि जिंदगी दे विच कई बारी कई समस्या आउंदी है पर वो इन्नी गंभीर नहीं हुंदी जिन्नी असी उसनू अपने विचारां दे नाल बना लेंदे आ। जेकर असी भी अपनी जिंदगी दीआं परेशानियां नू थोड़ा सबर शांत मन दे नाल देखना शुरू कर दईए तो असी देखांगे कि उसका हल साडे अपने हत्थां दे विच ही हुंदा है, साडे आले दुआले ही हुंदा है। मैनू उम्मीद है कि यह छोटी जी कहानी तुहानू औखे समय दे विच उत्साहित करेगी, जिंदगी बारे सोचण दा एक नवा दृष्टिकोण देवेगी ते तुहाडा नज़रिया जरूर बदलेगी। जब हाथ में ना हो कुछ ना बस चले तकदीर पर, जब बस न चले वक्त की खिंची हुई लकीर पर, तब व्यर्थ है लड़ना उन रास्तों से जो मुड़ ना सके, बेकार है उन पंखों को फैलाना जो उड़ ना सके। अगर मुमकिन ना हो बदलना बाहर की परिस्थिति को, तो सहज भाव से बदल लीजिए अपने मन की स्थिति को।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: जी दोस्तों, आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी प्रोग्राम सोनी सवेर सुन रहे हो ते इस प्रोग्राम दे विच जिथे तुहानू जानकारियां दित्तियां जांदियां ने दिनां बारे आले दुआले दियां खबरां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां जांदियां ने, खास गल्लां तुहाडे नाल कीतियां जांदियां ने भी उत्थे जदों कोई खास दिन मनाया जांदा है ते उस खास दिन नाल संबंधित माहर नाल भी गलबात कीती जांदी है। जिवें कि असीं पहलां वी तुहाडे नाल गलबात कीती कि अज असीं नैशनल

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक

0: आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से

0: राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा।

0: यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान के

0: की है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है ईरान युद्ध पर मतभेद ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: पापा, कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस दे कुछ पैसे असी किसे होर खाते विच रखे सन?
2: दो साल तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
4: ता हुण बैंक जाओ जा वीडियो KYC राही KYC अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त। चलो
3: किथे
4: एडमिशन लेन ली, खाता होया एक्टिव।
5: RBI कहंदा है
6: जानकार बनो सुचेत रहो।
7: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी प्रोग्राम महक पंजाब दी सुन रहे हो। तो इस प्रोग्राम दे विच अगला गीत तुहानू सुनान जा रहा शहनाज अख्तर ते अख्तर ब्रदर्स दीआं आवाज़ां दे विच गाया होया यारा वे फिल्म दे विचों।

0: कह के थक गया।
1: की होया?
0: नवा किडबैक चाहिए है।
1: ता पहला कप्तान नू कहो, जे ना सुने ता मैनेजर नू।
0: करेक्ट।
1: ता इसे तरह पहला शिकायत बैंक नू करो, 30 दिना दे अंदर कोई जवाब जा हल ना मिलन ते CMS पोर्टल ते शिकायत करो। सो पहला बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं ता शिकायत होवेगी ना मंजूर। चलिए ले आ गया नवा किडबैक। RBI कहिंदा है
2: पहला अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
3: आओ हुण सुनदे हां महक पंजाब दी प्रोग्राम दे अखीर दे विच जिन्ने मेरा दिल लुट्टिया इस फिल्म दे विचों लिया। किप्पी गरेवाल दा गाया अज दे इस प्रोग्राम दा आखरी गीत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: सिंह जी ने न्याय वास्ते खड़न दा सिद्धांत दिता है।
1: साडे सारे गुरुआं दी सिख्यावां दा निचोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी विच संकलित है। गुरुआं दी बाणी दा पहला संकलन पंजवें गुरु अर्जन साहिब ने आदि ग्रंथ दे रूप विच कीता।
0: शहीदां दे सरताज विश्व भाईचारे दे मूर्तिमान गुरबाणी ते शांति दे पुंज श्री गुरु अर्जन देव जी।

0: अर्जन देव जी का आगमन 15 अप्रैल 1663 ईस्वी वैसाख वदी सतवी धन श्री गुरु रामदास जी दे घर माता पानी दी कुखों गोइंदवाल साहिब विखे होया।
1: गुरु साहिब दे बचपन बारे भट्टा ने इयों कहा,
0: तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो।
1: गुरु अर्जन देव जी, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हुए हो। इसका एक इतिहासिक सबूत भी मिलता है कि अजे आप सिर्फ एक साल दे सन ते आप श्री गुरु अमरदास जी दे सिंघासन ते चढ़न दी कोशिश करन लगे। एक साल दे बालक ने 2.5 फुट उच्चे सिंघासन ते चढ़न दी पूरी कोशिश कीती, पर चढ़ ना सके। माता पानी जी भजे भजे आए ते आप जी नू चुकिया ते आखिया कि इस गद्दी ते नहीं बैठना, ए धन गुरु अमरदास जी दा सिंघासन है, इस ते नहीं बैठी दा। ते इन्ने च गुरु अमरदास जी आ गए, बालक अर्जन देव जी नू सिंघासन ते बिठा के कहन लगे, ए दोता बाणी का बोता।
0: ए ता बाणी दा जहाज है, जे ए सिंघासन ते नहीं बैठेगा ता कौन बैठेगा। गुरु अमरदास जी दी ए सोच सही साबित हुई। सचमुच ही गुरु अर्जन देव जी बाणी दे जहाज जगत विच कहलाए।
1: बेबे पानी जी दा प्यार ते गुरु अमरदास जी दी जीवन जाच विरसे विच प्राप्त हुई। मुडली विद्या बाबा बुड्ढा जी तो ग्रहण कीती। आप पिता गुरु रामदास जी दी आज्ञा दा पालन बखूबी करदे सन। एक बार पिता गुरु रामदास जी ने आप जी नू ए कह के लाहौर भेजिया कि जिन्नी देर साडे वल्लों वापसी दा सुनेहा ना मिले तुसी वापस नहीं आना। गुरु पिता दे वियोग विच आप वल्लों जो पत्र लिखिया गया, शायद ए पत्र ही आप जी दी पहली रचना सी।

सुखमनी साहिब जो गुरु जी दी अमृतमई रचना है मनुख नू डर ते चिंता तो मुक्त कर दी है।

0: गुरु साहब ने उस समय प्रचलित संत भाषा, ब्रिज भाषा, रेखता, हिंदुस्तानी गाथा, संस्कृत, पंजाबी ते लहिंदी सब वनगियां दियां भाषावां विच रचनावां रचियां। आप जी ने 30 रागां विच बाणी रची। आप संगीत ते रागां दी पूरी मुहारत रखदे सन। सरंदा आप जी दा मन पसंद साज सी।
1: गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना आप जी दा वडमुला कारज है। आप ने पहले चार गुरुआं तो इलावा संतां भगतां दी रचना नूं इकत्तर करके उनां नूं रागां अनुसार संभालिया। ए वड अकारी धर्म ग्रंथ मनुखी एकता, सर्ब सांझी वालता ते विश्व भाईचारे दा प्रतीक है।
0: बाबा फरीद पंजाब, भगत कबीर ते रामानंद यूपी, भगत बेणी बिहार, नामदेव ते भगत त्रिलोचन महाराष्ट्र, भगत पीपा गुजरात, भगत सदना सिंध, भगत जयदेव बंगाल, भगत सैन ते पीखण राजपूताना, सारे संत भगत वख-वख इलाकियां दे होण दे बावजूद सारियां दा सुनेहा रब्बी एकता दा ही है। गुरु अर्जन देव जी ने सारी रचना नूं रागां अनुसार तरतीब दे के एक थां इकट्ठा कीता ते एक योग संपादक वांग सारा कारज निभाया। लिखाई दा काम भाई गुरदास जी तों करवाया। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना दा कारज 1604 ईस्वी विच संपूर्ण होया।
1: गुरु अर्जन देव जी जिथे गुरबाणी ते शांति दे पुंज सन, उथे देश ते धर्म लई शहादत देण तों वी नहीं झिझके। समय दी सरकार दा वर्ता ठीक नहीं सी। मुगल हकूमत ने आप नूं तसीहे दित्ते। आप जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया ते सीस उत्ते गरम रेत पाई गई। जदों आप जी ने इस्लाम कबूलन तों इनकार कर दिता, आप हिरदे वेदक तकलीफां सहन करदे हुए लाहौर विखे शहीदी प्राप्त कर गए। शहादत वेले भी गुरु जी ने अटल रह के सच्चे सुच्चे बल दा प्रगटावा कीता।

0: गुरु अर्जन साहिब ने स्वै बलिदान दे नाल देश च राष्ट्रवाद दा मुढ बनिया ते भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास दे पहले नायक बने। राष्ट्रवाद दे नाल नाल विश्व भाईचारे नूं भी गुरु अर्जन साहिब दी वड्डी देण है। गुरु ग्रंथ साहिब दा संकलन हरिमंदर दी नीह सूफी फकीर साई मियां मीर तो रखवाना, लंगर दी प्रथा शुरू करके मनुख दियां धर्म जात पात दे नां ते पाईयां वंडियां नूं तोड़ना, अकाल समय माझा खेतर च आम लोकां लई खूह पटवाउणा ते सब तों उत्ते गुरु साहिब दी अदुत्ती शहादत, गुरु साहिब दे विश्व भाईचारे दी स्थापती च वड्डे मील पत्थर ने। गुरु साहिब दे तुर विरोधी जहांगीर तक ने अपनी स्वै जीवनी च गुरु साहिब दे विश्व भाईचारे दे दृष्टिकोण नूं विद्मान कीता।
1: गुरु अर्जन साहिब दे विश्व भाईचारे दे संकल्प सदका सिख धर्म ते भारतीय सभ्यता सर्व धर्मां ते सभ्यतावां विच मोहरी बनी है। अज सारे भारतीयां नूं अपने सभ्याचार ते जीवन शैली ते माण है।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਵਾਚਕ

इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। हैलो फरमाइश प्रोग्राम हुण मैनू पूजा हांडा नूं इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त दे दिओ। फिर मौका मिलेगा, फिर मिलांगे। उदों तक लई तुसीं सारिआं ने रखना अपना ख्याल। हसते रहो, वसते रहो, जिंदगी नूं मानदे रहो। जिंदगी जिंदाबाद।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा, स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और

0: उधर में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीनी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 वज रहे ने ते हुन समा हो रहा तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम पेश करन दा तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम नू रोज़ाना तुसी सुनदे हो ते इस प्रोग्राम विच सुनाए जांदे ने तुहाडे मनपसंद फरमाइशी गीत, ओ गीत जो तुसी सानू फरमाइशां करदे हो व्हाट्सएप दे जरिए। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप दे जरिए सानू अपनी फरमाइशां भेजो, असी तुहाडियां फरमाइशां उस वेले तुहाडा नाम लैके पूरियां करांगे। सो दोस्तों, करना की है कि अपना नाम टाइप करो, अपने शहर का नाम टाइप करो, अपने रिश्तेदारां दा नाम टाइप करो जो इस गीत नू सुनना चाहुंदे ने तुहाडे नाल नाल, उस गीत की भी बोल लिख के टाइप करो जिस गीत नू सुनना चाहुंदे हो। ते हाँ, ये टाइप की करके तुसी डिटेल भेजनी किस नंबर ते आ, वो नंबर जरूर नोट करो। वो नंबर है 9465536077 यानी कि 9465536077। सो तरीका तुहानू दस दिता फरमाइशा साढ़े तक किदा पहुँचाउणियां ने, ये हुण तुहाडा काम है कि फटाफट फोन चुक के डिटेल सानू दस दिओ ते असीं तुहाडी फरमाइशा तुहाडा नाम लैके इस प्रोग्राम विच तुहाडे तक पहुँचावांगे। सो जद तक तुहाडियां फरमाइशा साढ़े तक पहुँचदियां ने, प्रोग्राम दा शुरुआती गीत सुनाउण जा रही है तुहानू गुरदास मान दी आवाज़ विच। जुड़े रहो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तुहाडा अपना मनपसंद तमक जलंधर पैंती।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

जी प्रोग्राम दा आखरी गीत दी फरमाइश सानू आई है जी मलेका सिरसा तो ते फरमाइश भेजन वाले ने राम स्वरूप लोहानी वाल परमजीत पम्मी पूजा वर्मा इन्होंने फरमाइश की है जी इन्हों एमी विरक का गाया हुआ गीत सुनाया जाए तो एमी विरक के गाए हुए गीत को सुनना चाहते हैं मल्लापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन न्यूजीलैंड तो गौतम जैन संजीव जैन सो इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं आओ सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत एमी विरक ते मन्नत नूर दी आवाज़ों में

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जाँच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन

0: दिन अर्गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 12:05 बज रहे ने। आओ सुनते हैं पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: जी, इस खूबसूरत गीत तो बाद चलते हैं जी अगली फरमाइश वाल, जो कि आई है जी सतिंदर सत्ती दे गाए गीत लई। कहिंदे जी सानू ये गीत सुना दिओ। और साधुल शहर तो आए ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर, हरविंदर, राजा सिंह, कुलविंदर कौर मान ते के एस मान, पिंड बुरज तो राम सिंह धग्गड़, भिंदर कौर धग्गड़, कुलप्रीत धग्गड़, हैप्पी ते पुन्नू, पिंड खैरका सिरसा तो इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन ते हनी लोट।
1: जी, ते इसे गीत दी फरमाइश सानू भेजी है जी पिंड मुल्लियां वाली जिला फाजिलका तो। ये फरमाइश भेजन वाले ने विनोद काठपाल, परवीन काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल, दीपा काठपाल, बलकार खोखर, कनेर महला पटियाला तो। ये फरमाइश सानू भेजी है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहारिका ते वंश बत्ता ने।
0: आओ जी फिर सुनते हैं सब दी रली मिली फरमाइश ते एक गीत।
1: जी

0: में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 बज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच प्रसारित कीते जाण वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए। हुण तो थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 तो लैके 1:40 तक, तो फिर 2 बजे तो लैके 2:15 तक

ढाई बजे प्रोग्राम सुनोगे रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च अमित कुमार दे गाए कुछ लोक गीत सुनवाए जाणगे। ढोलक ते संगत करनगे प्रदीप कुमार, मैंडोलिन ते चरणजीत ढिल्लों ते हारमोनियम ते राकेश कुमार साथ देंगे।

रात 7:50 ते प्रायोजित प्रोग्राम सुनोगे लम्हे। रात 8 बजे प्रोग्राम होएगा जिंदगी हसीन है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के अपने हमसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है।

0: ਹਰ ਜਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज

0: आज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden.

0: डिफेंस।
1: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्व

0: क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान
3: PDWM 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 2:30 बज रहे ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च अमित कुमार दे गाए कुछ लोक गीत सुनाए जाएंगे। ढोलक ते संगत करनगे प्रदीप कुमार, मैंडोलिन ते चरणजीत ढिल्लों ते हारमोनीयम ते साथ देंगे राकेश कुमार।

0: खेड संसार, खेड संसार प्रोग्राम सुनने वाले नूं वीरेंद्र दा नमस्कार है जी। खेड संसार प्रोग्राम च पूरे हफ्ते दियां खेड सरगर्मियां बारे जानकारी लेके तुहाडी सेवा च हाजिर हो गए हैं जी। अज दे प्रोग्राम च गल होएगी अंडर 15 अंडर 17 च एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप विच भारत ने जो इतिहासिक प्राप्ति की है उसकी चर्चा करांगे। IPL क्रिकेट किस मोड़ ते पहुंच गई है ते पंजाब दा भविख आने वाले समय च की होएगा, इस बारे भी गलबात होएगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विच भारत दे शटलर्स किस तरह का प्रदर्शन कर रहे ने, इस ते चर्चा करांगे। गांधीनगर विच चल रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विच भारतीय वेट लिफ्टर्स की प्राप्त कर रहे ने, इस ते गल होएगी। ते दे नाल नाल होर खेड गतिविधियां बारे भी तुहानू जाणू करवावांगे। बस सुनदे रहो साडा प्रोग्राम खेड संसार आकाशवाणी जलंधर तों। एशियन अंडर 15 ते अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 विच भारत दे बॉक्सर्स ताशकेंद विच जिस तरीके दे नाल लड़े, नतीजे सुन के हर भारतवासी दा सीना फखर नाल चौड़ा हो गया। ताशकंद दी धरती ते साडे नन्ने मुक्केबाजा ने ओ कमाल कर दिता जिस दी गूंज पूरे एशिया विच सुनाई दे रही है। भारत दे गभरुआं ते मुटियारां ने 44 मैडल जित के हुंजा फेरू इतिहास रच दिता। अंडर 15 के मुकाबलों की जो गल करिए तो इन्होंने बच्चों ने कुल 27 मैडल अपने नाम किए, जिस विच 9 सोने के, 6 चांदी के ते 12 कांसे के तमगे शामिल सन। अंडर 15 च साडियां धीआं ने 7 सोने के तमगे जित के पूरे एशिया विच पहला नंबर हासिल किया। अंजी ने 37 किलोग्राम भार वर्ग विच, सोनिया ने 40 किलोग्राम भार वर्ग विच, तनवी ने 43 किलोग्राम च, हंसिका अत्री, सुनैना, भूमिका ते एजल ए ओ लड़कियां ने जिन्होंने अंडर 15 मुकाबलों च सोने का तमगा हासिल किया। जम्मू कश्मीर के रजौरी के रहने वाले 14 साल मुहम्मद यासिर ने 58 किलोग्राम भार वर्ग विच उज़्बेकिस्तान के मुक्केबाज नूं हरा के इतिहासिक सोन तमगा जितया। यश कुमार ने 33 किलोग्राम विच देश की झोली विच सोना पाया। भारत की अंडर 17 की टीम ने कुल 17 मैडल जिते, जिस विच 2 सोने के, 7 चांदी के, 8 कांसे के तमगे शामिल सन। बॉक्सिंग की इन्नी महान प्राप्ति ते आओ फिर अंडर 17 की लड़कियां की टीम के हैड कोच जतेंद्र राज सिंह होरां दे नाल गलबात करते हैं ते जानते हैं उन्हां तों इस बॉक्सिंग परफॉर्मेंस बारे। जतेंद्र राज जी, साडे प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो सब तो पहला अंडर 17 च जिहड़ियां लड़कियां ने बाजी मारी है ना, उन्हां बारे वारी वारी सिर तुहाडे तों पुछदे हां जी। जतेंद्र जी, जिदां 46 किलोग्राम भार वर्ग विच राखी ने गोल्ड मैडल जितया, इहदे प्रदर्शन बारे तुसीं की कहोगे जी, किद्दां दी लड़ी है इह लड़की?
1: बहुत वधिया लड़ी है, और जिहड़ी होम कंट्री है उज़्बेकिस्तान, उहनां दे नाल उहदा फाइनल सी, और उस दे विच उहने दूजे राउंड दे विच ही RSC करके अपने ओपोनेंट नूं बाहर कढ़ता। बहुत ही शानदार तरीके नाल लड़ी है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके नाल, और कुड़ी चंगी है, अगे जाके दा फ्यूचर ब्राइट है जी।
0: खुशी चंद ने जतेंद्र राज सिंह जी 48 किलोग्राम भार वर्ग विच तमगा जितया, इहदी परफॉर्मेंस तों तुसीं किन्ने खुश हो जी?
1: खुशी साडी वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर सी, क्योंकि खुशी पिछले साल दी जूनियर एशियन चैंपियन भी रही है, यूथ एशियन गेम्स दी भी चैंपियन सी, ते असीं शोर शॉट ऑफ द गोल्ड लैके चल रहे सन। फाइनल बाउट उहदी जापान नाल पई सी, उहने सारे अपने पुराने ਕਜ਼ਾਕ ਉਜ਼ਬੇਕ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੀ ਦੀ ਬਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੱਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗੋਲਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
0: ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਊਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ?
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਵਿਆ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਾਕਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, 3-4-5 ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਕਸਰ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਬਾਊਟ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
0: ਜੀ। ਔਰ 63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ?
1: ਦੀਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਾਕਸਰ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੋਰਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, 17 ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧਦਾ

0: के देखो नवा टैलेंट ही आएगा, जो जिहड़े पुराने बॉक्सर्स ने नो डाउट ना, निकहत जरीन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर साडे इंडिया दी। देखो पहला मैरी सी, मैरी भी निकहत दे वेट जी सी, मैरी हटी ते फिर निकहत आई। देखो ये ते उतार चढ़ाव रहने ही ने, ताडे नवे जिन्ने बॉक्सर ने वो यंग ने, टैलेंटेड ने, गर्म खून हैगा, ठीक है ना। बॉक्सर बॉक्सिंग ताडा यू नो टेक्निक टेक्निकल और टैक्टिकल चीजा ने मंगदा, बट ओदे नाल ताडी कंडीशनिंग मंगदा। तो जिन्ने छोटे यंग बच्चे ने वो ज्यादा कंडीशन ने, ते नो डाउट अच्छा टैलेंट है वो भी, और उन्हें जो अच्छी परफॉर्मेंस दिती है वधिया दिती है। अगे आई होप कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स विच वी लाइक इंडिया दा नाम अगे रोशन करेगी।
1: जतेंद्र राज सिंह साडे नाल गलबात कर रहे सन, जो कि अंडर 17 भारत दी बॉक्सिंग टीम दे कोच सन, जिन्होंने ताशकेंद दा दौरा किया और भारतीय टीम ने यह शानदार प्राप्ति की। खेड संसार प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। IPL क्रिकेट दा इस वेले रोमांच शिखर ते है। जिहड़े भी क्रिकेट प्रेमी ने अक्सर चर्चा करते पाए जाते हैं कि वह किहड़ियां चार टीमां ने जिहड़ियां प्लेऑफ तक पहुंचणगियां। हुण तक दी ताज़ा स्थिति वेखिए तो पहले नंबर पर 16 पॉइंट्स के नाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। दूजे नंबर पर गुजरात टाइटन है, जिन्हें 12 मुकाबलों 16 पॉइंट ही हासिल किए हैं। तीजे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिन्हें 12 मुकाबलों 14 पॉइंट हासिल किए हैं। तो चौथे नंबर पर है पंजाब किंग इलेवन, जिन्हें 12 मुकाबलों 13 पॉइंट हासिल किए हैं। पंजाब की चर्चा जदों की जाती है तो सारे इस गल से हैरान ने कि पंजाब की टीम, जिन्हें कि पहले 7 मुकाबलों चो 6 मुकाबले जीते सी, और इदां लग रहा सी कि जिस तरीके दे नाल पंजाब की टीम खेड रही है ट्रॉफी यही चुकेगी, पर पिछले लगातार 5 मुकाबले हारन तो बाद पंजाब दे प्लेऑफ विच क्वालीफाई करन ते भी सवालिया निशान लग रहे। अगला मुकाबला RCB दे नाल है, ते उस तो बाद 23 मई नूं लखनऊ सुपर जॉइंट्स के नाल पंजाब दा मुकाबला होना है। तो जे पंजाब ने प्लेऑफ लई क्वालीफाई करना है तो लाजमी तौर पर ये दोवें मुकाबले उन्हें जितने होंगे। क्रिकेट माहिर मान रहे हैं कि पिछले 5 मुकाबलों पंजाब की टीम का हारण का मुख्य कारण उसकी गेंदबाजी तो उसकी फील्डिंग रही है। हालांकि पंजाब ने हुण तक बल्लेबाजी बहुत वधिया की है। पंजाब ही ऐसी टीम है जिन्हें IPL इस बार के सीजन 8 बार 200 तक का आंकड़ा टोटल पार किया। पंजाब के फास्ट बॉलर मार्को येनसन, जिस ते पंजाब दी टीम दा काफ़ी दारोमदार रहिंदा है, पिछले मुकाबलों कुछ चंगा प्रदर्शन नहीं कर सके। हुण वेखना यह होएगा कि आने वाले मुकाबलों पंजाब दी टीम दा कॉम्बीनेशन किस तरीके दे नाल बनाया जाएगा ता कि वह प्रभावशाली गेंदबाजी कर सके ते अपनी टीम नूं पंजाब दे गेंदबाज जित दे राह ते पा सकन। IPL च बल्लेबाजी के प्रदर्शन की जे गल की जाए तो साउथ अफ्रीका दे नाल तालुक रखने वाले हैनरिक क्लासन 12 मुकाबलों 508 दौड़ा बना के इस वेले पहले नंबर पर ने। गुजरात टाइटन के ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन 12 मुकाबलों 501 दौड़ा बना के दूजे नंबर पर ने। तीजे नंबर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विराट कोहली ने, जिन्होंने 12 मुकाबलों 484 दौड़ा 165.75 के स्ट्राइक रेट नाल बनाई। गेंदबाजी में सब का दिल जितया भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने 12 मुकाबलों 22 विकटा लैके पहला नंबर हासिल किया। गुजरात टाइटन्स के कगीसो रबाडा 12 मुकाबलों 21 विकटा हासिल कर चुके हैं तो वह दूजे नंबर पर ने। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी करद 19 विकटा हासिल कीतियां ने, तीजे नंबर पर ने। IPL क्रिकेट के हुण तक के मुकाबलों राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने 11 मुकाबलों हुण तक 40 छिक्के मारे ने, ते इस टूरनामेंट विच सब तो ज़्यादा छिक्के मारन वाले वो इकलौते बल्लेबाज ने। दूजे नंबर पर छिक्के मारन च अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने 12 मुकाबलों 37 छिक्के लाए ने। तीजे नंबर पर ने मुंबई इंडियंस के रयान रिकल्टन, जिन्होंने 10 मुकाबलों 37 छिक्के मारे ने। अज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के नाल होएगा, तो पंजाब का अगला मुकाबला कल दोपहरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाल खेडिया जाना है। खेड संसार प्रोग्राम च हुण चलदे हां जी बैडमिंटन दे कोर्ट विच। अजकल चल रहा है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट, ते भारत लई इह फखर दी गल है कि भारत दे सात्विक चिराग दी जोड़ी सैमीफाइनल विच दाखला लै चुकी है। टॉप सीड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल विच जापान दे ताकुमी नोमुरा ते युईची शिमोगोमी नूं सिद्धियां गेमां 21-12 21-13 नाल हरा के सैमीफाइनल विच दाखला लिया। आओ फिर बैडमिंटन के थाईलैंड ओपन बारे गलबात करते हैं गुरविंदर सिंह होरां नाल, जो कि बैडमिंटन के साबका अंतरराष्ट्रीय पद्धर के खिडारी ने। उन्हां तों जानदे हां कि इस मुकाबले च भारतीय शटलर्स किदां परफॉर्म कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह जी, साडे प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जिस तरीके दे नाल टॉप सीड सात्विक चिराग की जोड़ी सैमीफाइनल विच पहुंची है, इस

0: निहारी ना मर्चा, लोकी कहिंदे है भगवा ते रेडियो हाले भी जवान है। मैं भी किदां दियां गल्लां करदियां, किसे ने सुन लिया, उन्हां ने कहना भूआ किड्डी शैतान है।
1: 90 सालां दा सोहना सफर आकाशवाणी
2: जदों मारिया नी इक मेरी अख काशनी।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। शाम दे 4:30 वजन वाले ने आओ हुण तुहानूं लै चलदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर, जिथे तुसीं शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

तप तप लूह लूह हाथ मरोरो, बावल हुई सो सौ लोरो, तय सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। बिरहों कुठे हृदय विचो निकले ए बोल, बाबा फरीद जी द्वारा उचारित ने, प्रभु नू मिलन दी सिक रखन वालियां जीव रूपी स्त्रियां दे बोला विचों मन दी अवस्था दा चित्रण हुंदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी राग बिलावल विच उचारित शब्द विच फरमाउंदे ने कि मेरा मन उस दयाल प्रभु नाल विद्या गया है, उस तो इलावा मेरे हिरदे दी वेदना नू कौन जान सकता है, मैनू उस उपर आस ते भरोसा है, इसे करके मैनू किसे होर दूजे दी कोई चिंता नहीं है। मन बेधिया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। सरवण करदे आ भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: में ज्ञानी गुरमीत सिंह।
1: बिलावल महला पहला। मन मंदर तन वेस कलंदर, कट ही तीर्थ नावा। एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहड़ जन्म ना आवा। मन बिद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई। हम नाही चिंत पराई रहाओ, अगम अगोचर अलख अपारा। चिंता करो हमारी, जलथल महियल भरपुर लीना। घट घट जोत तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी। मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना। मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे। जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। यह पावन बचन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी दे राग बिलावल विच उचारण कीते होए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 उपर सुभाए मान हन। इस शब्द दा केंद्री भाव जो शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां विच मौजूद है, साहिब फुरमान करदे हन। मन बिद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई। हम ना ही चिंत पराई रहाओ। मनुखी मन दा सुभाओ है कि यह किसी खास वस्तु थां जां व्यक्ति नाल जुड़न दी कोशिश विच लगा रहिंदा है, जिस तों मन दी तृप्ति नहीं हुंदी अते भटकना बनी रहिंदी है। पर गुरु बचना मुताबक जे यह मन अपने असले नूं समझ लवे कि मैं उस प्रभु दी अंश हाँ, तां यह मन गुरु किरपा नाल उस प्रभु दे चरणा नाल जुड़ आत्मक आनंद दी प्राप्ति कर लैंदा है। राग आसा विच गुरु अमरदास जी दे बचन हन, मन तू जोत स्वरूप हैं अपना मूल पछाण। हे मेरे मन, तू उस परमात्मा दी अंश हैं जो प्रकाश स्वरूप है। हे मन, तू उस अपने असले नाल सांझ बना लै। मूल पछाण है तां सहो जाणै, मरण जीवन की सोझी होई। विचार अधीन पंक्तियां विच साहिब बख्शिश करदे हन। मन बिद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाणै पीर पराई। हम ना ही चिंत पराई रहाओ। हे मेरी माँ, भाव मैनू प्रभु चरणा नाल जोड़न वाले सतगुरु जी, आप जी दे उपदेश सदका मेरा मन दया दे घर प्रभु चरणा दे विच विज गया है, भाव लीन हो गया है, जुड़ गया है। अते मैनू यह यकीन हो गया है कि परमात्मा तो बिना कोई होर मेरी वेदना भाव दिल दी पीड़ नूं नहीं समझ सकदा। इस करके हुण मैं प्रभु तो बिना किसी होर दी आस नहीं रखदा। गुरु रामदास जी गोंड राग विच वचन करदे हन, हर दर्शन कौ मेरा मन बहु तपतै, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर रहाओ। हे सतसंगी जनो, उस प्रेम दे तीर दे कारण हुण मेरा मन प्रभु दे दर्शना वास्तियों विलकदा है, जिवें कोई प्यासा मनुख पानी नूं तरसदा है। परमात्मा दा प्यार मेरे मन विच तीर वांग लगा है। उस प्रेम तीर दे कारण पैदा हुई पीड़ा नूं मेरा हरी प्रभु ही जानदा है, होर कोई दूजा नहीं। शब्द दे आरंभ विच फरमाउंदे हन बिलावल महला पहला। मन मंदर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा। एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा। भाव मेरा मन प्रभु देव दे रहन लई मंदर बन गया है। मेरा शरीर भाव हरेक ज्ञान इंद्रा मंदर दी यात्रा करन वाला रमता साधु बन गया है। भाव मेरे ज्ञान इंद्रे बाहर भटकण दी थां अंदर वसदे परमात्मा वल परत पए हन। हुण मैं हिरदे तीर्थ उत्ते ही इशनान करदा हाँ। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। परमात्मा दी सिफत सलाह दा शब्द मेरी जिंद विच टिक गया है। इस करके मैनू यह यकीन हो गया है कि मैं मुड़ जन्म मरण

विद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द दा गायन कीता सी पाई अमरीक सिंह जख्मी ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ दी DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 6 बज रहे ने, हुन तुसी समाचार सुनोगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के 3रे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया।

0: किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज से DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है।

एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित

0: कि तू बोलना की है, ये ख्याल रखना है कि की नहीं बोलना,
1: क्या
0: क्योंकि जरूरी गल ये है कि की
1: नहीं बोलना।
0: ये नहीं बोलना वाली गल जिहड़ी है वो मैं आकाशवाणी दे प्रोड्यूसर तो सीखी, तो खास तौर पर सोहण सिंह मिशा जी तो सीखी कि उन्होंने मैनू जदों अंडरलाइन करते सी, असी जिवें मैं पहला दस्सिया अखबारों के की छपया की छपया, तो वह अंडरलाइन करके असी वो सेंटेंस जिहड़े आ उन्होंने किस तरह मतलब कटते सी जां विचों छड्डदे सीगे कि ये चीज़ां नहीं बोलणियां। और इस गल ने मैनू थ्रू आउट जो मेरी मीडिया लाइफ है उसके बहुत पे किया कि नहीं बोलना। तो असल दे विच इह आ कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम मिट्टी दी मैक एक प्रोग्राम इत्थे चलदा सी वो मैं कीता लगातार, उहदियां स्क्रिप्ट्स कीतियां, और फिर उस तो बिना जिहड़ा उह मतलब फिर बाद दे विच तां बहुत सारे इंटरव्यूज़ कीते मैं जिहदे विच मतलब मोहनजीत शामिल है, मनजीत टिवाणा शामिल है, बहुत बहुत लोग इस तरह के शामिल ने जदों जदों उन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिले आम तौर पर उन्हां नाल इंटरव्यूज़ जिहड़ियां उह आकाशवाणी दे उत्ते मैं कीतियां, और तुहाडे सिरजणा प्रोग्राम दे विच मैं बहुत बार शामिल होया, और मतलब ना सिर्फ मतलब आप शामिल होया सगों होर लोगों को शामिल करने के भी अपना योगदान पाँदा रहा। और जिहड़ी गल तुसी मतलब पूछी है कि एक चीज़ जिहड़ी है वो डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ कंटेंट। कंटेंट जिहड़ा क्योंकि आपां हमेशा समझते हैं कि मीडिया प्रसारण के कंटेंट मस्ट है। जदों मैं बाद दे विच डीडी पंजाबी दा इंचार्ज भी बनिया, मैं हमेशा अपने अनाउंसरस नूं जदों असीं मीटिंग पहले दिन करदे कि दूसरे दिन सवेरे की करना सवेर वाले प्रोग्राम्स दे विच, मैं हमेशा इस गल ते जोर दिंदा कि हमेशा इस गल दा ध्यान रखो कि कोई अगर तुहानूं सुन रिहा ते उह तुहानूं क्यों सुनेगा। जे तुसीं कोई नवीं गल करोगे तां ही उह तुहानूं सुनेगा, नहीं तो उस वेले तक जदों तक मतलब दूरदर्शन के प्रोग्राम हुण आ रहे जां अजकल रेडियो दे आ रहे, एकदम जिहड़ा वो रिमोट ते स्विच जिहड़ा ना वो अगे चले जांदा जे कोई कम की गल नहीं हो रही।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं सुनन की गल कीती है, क्योंकि दो ही चीज़ा है, जिन्हों सुनना आ गया उन्हों कहना आ गया, तो जिन्हों कहना आ गया उन्हों सुनना आ गया, वाइसा वर्सा है दोनों चीज़ा।
0: बिल्कुल।
1: और रेडियो जिहड़ा प्रसारण का माध्यम है जो आप देखते हाँ कि यह तुहानूं सुनना सिखाउंदा है।
0: बिल्कुल।
1: ते जेड़ा बंदा सुनना सीख जाता है वह फिर रेडियो नहीं वह बाकियों भी सुनना सीख जाता है। और जे आप समुची शख्सियत की गल करते हाँ कि सुनने वाली ताड़ी शख्सियत जिहड़ी है उस बदलाव आते हैं, उदा बदलाव नहीं आ सकते है, कौन किनू सुन रहे हो, की सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, जिदा तुसीं भी जिक्र किया है, यह बड़ा महत्व है।
0: बिल्कुल। मनोविज्ञानी आम तौर पर कहते मनोविज्ञानी कि जिन्ना चिर तुसी चुप नहीं करते उन्ना चिर तुहाडा सोच का प्रोसैस शुरू नहीं हुंदा, तुहाडी सोचनी उदों ही शुरू हुंदी है जदों तुसी आप बोलना चुप कर देते हो। बहुत जड़ी वो आम तौर पर सुरजीत पात्र एक गल कोट करते हुंदे सी कि कविता हमेशा कवि नूं कहिंदी है कविया तू चुप करें तां मैं बोलना, क्योंकि जिन्ना चिर कवि चुप नहीं करेगा उन्ना चिर उहदे माइंड दे विच कविता उत्पन्न नहीं होएगी, डिवेलप नहीं होएगी। इस तरह तुहाडी सोच है, तुहाडी सोच जिहड़ी है वह तुहाडी चुप नाल जुड़ी हुई है। चुप जिहड़ी है वह तुहाडे तुहानूं विश्लेषण करना सिखाउंदी है, चुप जिहड़ी है वह तुहानूं सुनना सिखाउंदी है, जिवें तुसीं शुरू दे विच कहा कि इस करके जिहड़ा उह सुणन दी शक्ति जिहड़ी है वह जिन्नी तुहाडी बलवान होएगी, जिन्नी तुहाडी पेशेंस बलवान होएगी, उन्ने ही तुसीं वधेरे बौद्धिक हो जाओगे, उन्ने ही तुसीं वधेरे क्रिएटिव हो जाओगे, उन्ने ही तुसीं बहुत सारियां चीज़ां रचनियां शुरू कर देवोगे। इस करके रेडियो जिहड़ा मतलब रेडियो ते वड्डे वड्डे नाम रहे ने, मतलब कदे जिहड़ा उह मतलब जिन्हां नूं आपां कहिंदे कि मंटो वर्गे बंदे, अमृता प्रीतम वर्गियां अनाउंसर,
1: अमृता
0: दलीप कौर टिवाणा वर्गे। अमृता प्रीतम बारे तुहानूं पता है कि एक बहुत मशहूर गल है कि जदों दिल्ली रेडियो ते उह अनाउंसमेंट्स करदे हुंदे सी ते लोकां ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੋਲੂ ਉਹਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ

0: कीमती समा चुपचाप खा लिया है। खास करके विद्यार्थी वर्ग इसका वड्डा प्रभाव महसूस कर रहा है। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हले तो बहुत समा पाया है, पर संस्कृत साहित्य सानू सिखाता है कि समा किसी लिए नहीं रुकता। इसलिए संस्कृत नीति ग्रंथा विच कहा गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात मनुख नु चाहिदा है कि वह हर पल अते हर कण का सही उपयोग करे। जे एक एक पल व्यर्थ चला गया तो विद्या किवें प्राप्त होवेगी, अते जे एक एक कण खत्म हो जावे तो धन किवें बचेगा। इस श्लोक विद्यार्थियों लई बहुत वड्डा संदेश है कि छोटे छोटे समय के टुकड़े ही मिलकर वड्डी सफलता बनाउंदे हन। संस्कृत साहित्य विच समय नू सिर्फ डर या नाश नाल नहीं जोड़िया गया, बल्कि उसनू उपर उठाउण वाला अते सफलता का साधन भी मन्या गया है। समा एक ऐसा तन है जो हर मनुख नू एक सार मिलता है। ना कोई तनवान इसनू खरीद सकता है अते ना कोई गरीब इस तो वांझा रहिंदा है। पर फर्क सिर्फ यह हुंदा है कि कोई मनुख समय का सदुपयोग करके महान बन जाता है अते कोई इसनू व्यर्थ गवा देता है। इसलिए संस्कृत साहित्य विच बार बार चेतावनी दी गई है, कालह क्रीड़ति गच्छत्यायुः, अर्थात काल अपना खेड खेड़दा रहिंदा है अते मनुख की उम्र हौली हौली बीतती जाती है। अंत विच मैं यही कहना चाहांगा, संस्कृत साहित्य विच समा केवल घड़ी की सूई नहीं, बल्कि जीवन का आधार, अनुशासन का मार्ग, सफलता का साधन अते परमात्मा का रूप है। वेदा ने उसनू सृष्टि की शक्ति कहा, गीता ने उसनू भगवान का रूप दसिया, नीति शास्त्र ने उसके सदुपयोग की सिक्ख्या दी, आधुनिक विज्ञान ने उसकी महत्ता स्वीकार किया। इसलिए सानू समय का सत्कार करना चाहिए है, क्योंकि जिहड़ा मनुख समय की कदर करता है समा भी उसकी कदर करता है। इस संदेश नाल मैं अपनी वार्ता नू इत्थे समाप्त करता हाँ। धन्यवाद।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम साहित्य सुधा। संस्कृत साहित्य विच समय का महत्व इस विषय ते गलबात कर रहे सी डॉक्टर गोपी शर्मा। हुण वेला हो रहा है साढ़े अगले प्रोग्राम का, जिहदा नां है ये लम्हे। सो पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। स्वास्थ्य विभाग का पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा अपने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों और महिला स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला के जरिए जन्म से 5 साल तक के शिशुओं और 64 साल से कम उम्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संवर्धन और रोग रोकथाम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवा में शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भाशय ग्रीवा की जांच शामिल है। शिशुओं के समग्र जैसे शारीरिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत शिशु स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। पालन पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने वाले सभी शिशुओं के माता पिता को स्वस्थ शिशुओं और उनके बेहतर लालन पालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से उन्हें अवेयरनेस देना। सूचनात्मक पुस्तकाओं, ऑडियो विजुअल संसाधनों, वेबसाइट, रिकॉर्ड की गई हॉटलाइन, पालन पोषण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत परामर्श के रूप में प्रसव पूर्व अवधि के दौरान और फ्री स्कूल वर्षा के दौरान शिशुओं के विकास, शिशु देखभाल और पालन पोषण पर माता पिता को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद माता पिता को सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें स्तनपान करने वाले माँ के लिए स्तनपान कोचिंग और सहायक समूह, प्रसवकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं वाले माता पिता के लिए मदद कार्यक्रम, नवजात और शिशुओं को टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस, डिफ्थीरिया, टेटनस, खांसी, न्यूमोकोकल संक्रमण, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य पेशेवर

0: द्वारा आयोजित नियमित समीक्षाओं की श्रृंखला शामिल है जो स्वास्थ्य और विकासात्मक संबंधी समस्याओं वाले शिशुओं की समय पर पहचान और रेफरल प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। इसमें नवजात के लिए पहला स्वास्थ्य परामर्श, शिशु के विकास मानकों की आवधिक निगरानी, सुनवाई और विशिष्ट आयु में प्री स्कूल दृष्टि स्क्रीनिंग शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र पूरी गर्भावस्था और प्रसव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सार्वजनिक अस्पतालों के प्रसूति विभाग के सहयोग से एक व्यापक प्रसव पूर्वक साझा देखभाल कार्यक्रम संचालित करता है। प्रसव के बाद सभी महिलाओं को प्रसव बाद जांच और परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक पर सलाह दी जाती है। केंद्र प्रसव बाद माताओं को सहायता समूह और व्यक्तिगत परामर्श में अनुभव साझा करता है। इसके माध्यम से जीवन में बदलावों को अनुकूलित करने में भी मदद करता है। बच्चा जनने की उम्र वाली महिलाओं को उचित गर्भरोधक तरीकों का परामर्श और पर्चा प्रदान किया जाता है। परामर्श उन ग्राहकों को भी दिया जाता है जिनको बांझपन की समस्या होती है और विशेषज्ञों के पास रेफरल की उचित रूप में प्रबंध किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा जांच परीक्षण प्रदान करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना लक्ष्य है। महिला स्वास्थ्य केंद्र 64 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, शारीरिक परीक्षण और उपयुक्त जांच परीक्षण प्रदान किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सत्र के आधार पर महिला स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जाती है। कार्यशालाओं और सहायक समूह के रूप में शैक्षिक कार्यक्रम नियमित रूप से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ WHCS में विभिन्न सेवा सत्रों में आयोजित किया जाते हैं। शिशुओं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपने कम्युनिटी हेल्प के बारे में। तो ये कार्यक्रम फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੇ ਲਮਹੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
2: ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੰਬਰ 1।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर

20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल

0: जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम

प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों की रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: मौसम को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और

0: मीना कुमारी, संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली। सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन ने इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है भगत सिंह की माँ।

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी को उनकी मौत चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा, अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से

तह में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो

0: साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटी सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल, पर तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: राकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता मैं, मेरे हाथ में किधर है
1: जी जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।
3: नैन हमारे सांझ सतारे देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं।
2: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने, उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
2: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैं दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में किसी की हाय।

में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा उमखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में मैं हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया।

0: उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारी, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल लेहो तुम, द्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल लेहो तुम, द्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा

0: बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतु गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत में अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट

बिल्कुल दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सौगात प्रोग्राम च तुहाडा दोस्त हमदम पारस चड्डा बिल्कुल जी तुहाडे नाल शामिल हो चुका है अज दे रंग दे विच, अज दे शाम दे विच, क्योंकि यह प्रोग्राम तुहाडा है, तुहाडे नाल ही सजदा है। सो तुहाडे नाल रूबरू होण दा, गल्लां करन दा मौका सानू सौगात प्रोग्राम च मिलदा है। नंबर तुसीं जाणदे हो 0182-43-171 नंबर मिला के तुसीं अपने दोस्त पारस तक पहुँच सकते हो। वट्सएप ते साडा नंबर है जी 94-65-53-60-77। बहुत दिनों बाद तुहाडे नाल अज वट्सएप ते भी बहुत सारियां गल्लां करनियां ने, चिट्ठियां बहुत मिठियां मेरे कोल पहुँच गईयां ने। सो प्रोग्राम की शुरुआत जिहड़ी है असीं कर रहे हैं। सो लकी कॉलर दोस्त दी सानू बड़ी इंतजार हुंदी है कि जदों नंबर मिला के साडे कोल पहुँचे और प्रोग्राम की शुरुआत जिहड़ी है वो करे। सो प्रोग्राम की

करणवीर हाउस पुछो कैंचियां तो बठिंडा पंजाब से। नमस्कार जी, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दुपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, क्या बात है। दमन ते अभिजोत किसी वीकीच सानू कहिंदे जरूर तुसी शामिल करो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुसी इन्ना प्यार दिंदे हो। अगले मैसेज की गल करिए जी, भेजण वाले दोस्त ने सानू नज़दीक बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, फाजिलका तो फरमाइश आई सी साढ़े को प्रभगल की आवाज़ गीत तक पहुँच रहा है। मिलते हैं इस गीत तो बाद।

लॉजी नाल सानू वट्सएप ते मैसेज भी लगातार पहुँच रहे हैं भेजन वाले दोस्त ने मंटी हरजी राम मलोड़ तो नथु राम शर्मा ललित शर्मा इंदिराज शर्मा सुरेश कोई भी गीत सुना दो धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया गाँव फ्रांसी सार तो राजकुमार दाऊती प्रमोद कुमार दाऊदी पुष्पेंद्रा कुमार दाऊती हुणा ने सानू याद किया बहुत बहुत शुक्रिया पिंडते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर किसी भी गीत शामिल करो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज सानू मिर्जापुर के क्षेत्र यशपाल तिमान श्रीमती कृष्ण तिमान राहुल तिमान कोमल तिमान शुभम तिमान प्रियंका तिमान आंचल कुछ परफ प्रपीन तिमान शिराग तिमान उन्होंने पूरा तिमान परिवार भारत जी नमस्कार आपको आकाशवाणी जंदर की स्थापना दिवस की बधाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 5:20 पर भी बधाई संदेश भेजा था परंतु किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कृपा कारण बताएं कि हमें श्रोता पूछ सकते हैं क्योंकि हमें किसी भी चिंता रहती है कि क्या बात हो रही है उनका जवाब क्यों नहीं आया। देखो जी थोड़ा मैसेज जरा असं शामिल कर लिया कुरुक्षेत्र तो यशपाल तिमान जी और तुम जो मैसेज भेजे मैसेज मैनू मिल गया असी तय दिलों धन्यवाद करते हैं तुहाडे आकाशवाणी जलंधर की जिहड़ी स्थापना दिवस ते तुसीं सानूं इन्ना प्यार दिता है उहदे लई साडे कोल शब्दां च बयान नहीं है कि आकाशवाणी जलंधर नूं तुसीं कितना ज़्यादा प्यार दिंदे हो। रामपुर बिश्नोई तहसील डब वाली जिला सिरसा हरियाणा तो मक्खन राम जी जनागल राजेंद्र कुमार सुशील जनागल अंकित राजदीप इंदराज चिंकी सुमन ते उहनां दा पूरा परिवार बहुत बहुत शुक्रिया जी। सत श्री अकाल जी किसी भी गाने जो शामिल करो मजनूदा टीला मुकमल बालूजा मत बालूजा सागर उमंग आकाश गुड़िया इशिता अरोड़ा उन्होंने जिम्मेवारी साढ़े दे दी है जी उम्मीद करते हैं तो वधिया लगेगा।

0: हाँ जी, नंबर मिला के दो साढ़े को पहुंच गए, नहीं आओ गलबात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार पार्थ चड्डा जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: श्री गुरु रविदास नगर मरोठो की क्या रसगनिया जी,
0: रसगनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत थैंक यू जी,
0: होर
1: सारी
0: सुनाओ,
1: गल रिसीव करने वास्ते।
0: घर परिवार सब चढ़दी कला?
1: चढ़दी कला जी, चढ़दी कला।
0: चलो,
1: तुसी सुनाओ।
0: चढ़दी कला ही
1: ठीक
0: होनी
1: है।
0: चाहिए जी। थोड़ा साथ प्यार,
1: हाँ
0: जो मैं तो हमेशा ही कहना है कि असल रूह की खुराक जिदा बाकी वाली खाना है, साढ़े लिए दुआवियां ब्लैसिंग्स नहीं, थोड़ा प्यार है जिदा सदका असी चले फिरते हैं। और शनिवार का दिन असी मिला के रखे भी इस दिन साड़ी वारी है, तो असी जड़ा है थोड़े नाल इस दिन जरूर मनाने हैं। तो खास की साढ़े लिए अज लैके आए हो
1: पिछले शनिवार तुसी मेरे ख्याल छुट्टी ते सी, हाँ जी।
0: जी? असी एबसेंट साड़ी लगी है जी, उसकी गुस्ताखी माफ।
1: नहीं,
0: असी
1: कोई नहीं, बंदे नु काम भी पै जांदा जी।
0: जी, पर नहीं थोड़े ना साड़ी जी रूह जी असर जो दिल है ना, वो इतने आकाशवाणी जी
1: हाँ
0: वास्ते जी, थोड़े सदका
1: हाँ
0: ही जोड़ा सानू इन्ना प्यार जिते भी जाइए इन्ना मिलता है। सो आकाशवाणी का थोड़ा सारिया का असं देना नहीं दे सकते, शब्दों च कह के या बयान नहीं कर सकते कि किड्डी वड्डी गल है साढ़े लिए कि तुसी नहीं दूरों चल के या नेड़े वाले दोस्त जिन्हें भी ने जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने सारे तुसी बहुत ज़्यादा प्यार ते मान देने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਰ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।
0: ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ?
1: ਹਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗੀ ਜੀ,
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
1: ਨੈਚੁਰਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ,
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।

गोरा गोरा रंग तेरा बोलने गुलाबी, गोरा गोरा रंग तेरा बोलने गुलाबी, देख देख तेनू जट हो गया शराबी, जट हो गया शराबी, ओ कुंड मुखड़े तो चक आई माले के।

0: लॉजी नंबर मिला के दो साढ़े को पहुंचे नहीं हो, गल बात करते हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है?
1: ठीक है जी, मैं ज्ञान सिंह जिला
0: फिरोजपुर वाले हूँ। बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सरकार के। हेलो हेलो, लगता है आवाज़ साढ़े नाल मिला के दूर चले गए ने। इंज देखो जी, बड़ी मुश्किल दे नाल फोन मिलता है दूर, तुसीं जाया ना करो, क्योंकि जिहड़ा है साथ कुछ मिनटा कुछ सकिंटा का हुंदा है। सो एक सेकंड नंबर मिला के अपने दोस्त पारस तक जरूर गल कीते बिना ना जाया करो।

आहा, सच्ची सवेर हो गई। ए सिग्नेचर ट्यून रोजाना ही बड़ी चंगी लगती है। हाथ च दुद्ध डोलू ते मोडे दे बैग विच एक छोटा जिहा ट्रांजिस्टर लैके हर रोज सवेरे निकल जांदा।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। अज वीरवार शक समत 1938 के वैसाख की 8 तद अनुसार ईस्वी सन 2016 के अप्रैल महीने की 28 तारीख इस वेले सवेर के 5:56 ते 47 सैकेंड हुए ने।
1: ओए सीता इंद्रेश की आवाज है, सरबत दे पले क्यों ओए की हाल है तेरा? शुरू कर रहे मैं सुनिया तू कुड़ी दा ब्याह भी कर दिता ते मैनू सद्या भी नहीं। किन्ने दिन तुसी लोका ने मेरे नाल काम किया है, तू अपने जग्गू भा नू ही भुल गया। चल छड, तेरे नाल गिला शिकवा फेर करांगे। अच्छा एक गल दस, तू अक्सर मॉर्निंग ट्रांसमिशन विच तेरी आवाज नहीं सुनाई दंदी, लगता है अजकल खूब नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं। करे सब ठीक है ना? किते परजाई दे नाल कोई पंगा तो नहीं लै बैठा? दूजे चैनल ते तां शास्त्री संगीत आ रहा, ये आर्टिस्ट कौन है, किहड़ा घराना है? बनारसी घराना है या किराना कराना? पर अच्छा लग रहा, बारिश की आवाज नाल तुन भी बहुत चंगी लग रही है। ये तो मल्हार है।
2: हुने तुसी रिमझिमी बरसात दी सवेर दे मौके ते सितार ते राग मियां की मल्हार सुन रहे सी।
1: वाह, मेरे कन्ना ने ठीक ही सुनिया, पर अनाउंसमेंट विच एकदम फ्रेश आवाज सुनाई देती है। कैजुअल है या फिर कोई नवा अनाउंसर? तू कोई बिल्कुल नवा जापता है, वैसे अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया कर रहा सी। बुरा ना मन्नी मेरी गल दा, शायद नवी नवी नौकरी लगी है?
3: हाँ जी,
1: बहुत खुशी हुई बई। मेरा नाम जगमोहन है, शायद तुसी पहचान लिया होवेगा।
3: जगमोहन? ओ हाँ हाँ, ओ ते तुसी ओ वेटरन ड्यूटी ऑफिसर जगमोहन, तुहाडे बारे च बहुत कुछ सुनिया। 34 साल तुसी नौकरी की थी, ते काफी साल हो गए तुहानू रिटायर होए। स्टूडियो नू तुसी मंदिर आखदे सो ना?
1: जी जी,
3: असी तो यह भी सुनिया कि तुसी फिलर भी प्रोग्राम नाल मिलदा जुलदा ही चुनदे सो।
1: जी जी,
3: एक बार ठुमरी भैरवी तो बाद गिटार दा फिलर वजन लगा, तो तुसी भज के दूसरा फिलर लैके स्टूडियो वाल जा रहे सी कि ठोकर खा के गिर गए।
1: जी जी,
3: तुहाडे पैर दी हड्डी टुट गई।
1: हाँ जी,
3: तो तुहानू हॉस्पिटल लैके जाना पे।
1: जी जी जी,
3: उत्थे एक्सरे दे टेबल ते पे पे तुहाडी निगाह घड़ी ते पई, ते तुसी
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक बेनती, मैं हूँ एक बहुत अर्जेंट फोन करना है, प्लीज कृपा करके एक फोन नंबर बंद कर दियो। दरअसल दरअसल 8:30 बजे एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजना है, उसका कट डिफेक्टिव है, वो ट्रैक बैक कर सकता है डॉक्टर साहब। और इस वेले जो अनाउंसर ड्यूटी ते है उसने इस गल का बिल्कुल पता नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज ये फोन बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब ये फोन बहुत जरूरी है, डॉक्टर साहब प्लीज। इस नवे अनाउंसर का ना जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। इंज करदा मैं बब्बू के कमरे च फोन कर लेना, पर वो लोग तो अजे जागे भी नहीं होंगे। एक छोटे जे फ्लैट के लिविंग रूम विच लक्कड़ का पार्टीशन करके एक पासे अनीता ते बेटी सी, ते दूजे पासे मैं। मेरे वाले पासे खिड़की भी नहीं सी कि मैं आसमान भी वेख सकां। जे मैं उसे पलंग ते हुंदा ते अनीता नू जरूर जगाउंदा, ते मैं उसनू कहंदा अनीता उठ, टाइम हो गया, बब्बू ने जाना। ते अनीता कहंदी ओह सॉरी, मैनू उठन च देर हो गई, तुसी मैनू पहला क्यों नहीं जगाया?

0: कमीज सिलवा के पा लेना।
1: हेलो
2: हेलो, आकाशवाणी
1: जी,
2: ड्यूटी रूम।
1: हाँ हाँ,
2: मैं जगमोहन बोल रहे हैं जी।
1: कौन जगमोहन?
2: मैं यानी कि एक पुराना मुलाजम। तुसी कौन बोल रहे हो?
1: मैं ड्यूटी ऑफिसर बोल रहा।
2: अच्छा अच्छा, की ना है थोड़ा भाई साहब?
1: वो ना जान के की करना है तुसी? वैसे तुहानू कोई काम है
2: जी? काम दरअसल, आज सवेरे रेडियो ते एक नवी आवाज़ सुनाई दित्ती सी। ग्रामोफोन रिकॉर्ड लगा के बारिश दे गीत प्रेजेंट कर रहा सी कोई। उस मुंडे नू बुला दोगे जरा?
1: नहीं नहीं नहीं, उनू अजे नहीं बुलाया जा सकता।
2: अच्छा अच्छा, वैसे उसका नाम की है?
1: राजन गुप्ता।
2: की
1: गल, कोई मैसेज देना सी उनू?
2: नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है। इस विच ड्यूटी ऑफिसर का भी की कसूर? ठीक ही किया उन्हें। वैसे भी लाइव स्टूडियो विचों कदे भी किसी नू नहीं बुलाया जाता। मैं तो आप भी इंजी करता सी।

0: अच्छा, वैसे उसका नाम की है
1: राजन गुप्ता।
0: की
1: की गल, कोई मैसेज देना सी उन्हूं?
0: नहीं नहीं नहीं बस ठीक है। इस विच ड्यूटी ऑफिसर का भी की कसूर, ठीक ही किया उन्हें। वैसे भी लाइव स्टूडियो विचों कदे भी किसी नूं नहीं बुलाया जाता, मैं तो आप भी इंज ही करता सी। एक मिनट सुनिए जरा, ये बस बस स्टैंड जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, चंगा होगा मैं इस बस से चढ़ जावा तो आकाशवाणी घूम के आवा। हाँ बस इतने रोक दियो रोक दियो। हाँ जी, मैं इतने BMC चौंक से उतरना है, नाल ही आकाशवाणी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी के सामने इन्नी भीड़ क्यों कट्ठी हुई है? जरा हटियो, एक मिनट हटियो जरा, मैं भी देखा जरा, प्लीज प्लीज प्लीज एक पास से। सिर किन्नी बुरी तरह कुछ लिया गया, ओफो, सड़क से तो खून ही खून बिखरिया पे। ये तो सुरफा है, बड़ा माड़ा होया। किन्ना पुराना गायक सी, किन्ना वधिया गीत गाउंदा सी। मैनू अज भी याद है आकाशवाणी के खुले आंगन विच सदे हुए मेहमाना के सामने लाइव गाया सी। मैं उसी दिन तां रेडियो ज्वाइन किया सी। किन्नी मिठास सी उस आवाज विच, किन्ना सुकून सी। अजकल स्पैनिश गिटार, ड्रम बीट्स, ढिंचक ढिंचक नॉनसेंस नवे FM दे चैनल ते चलता रहिंदा है, नवे प्रसारणा दा हासा, हा हा ही पुट्ठी सीधी खिचड़ी, एक नवी भाषा दा जन्म, विकाऊ टाइम स्लॉट, बाजारीकरण। पर जो सुरफा नहीं है ते ना ही उसका 78 RPM वाला रिकॉर्ड। पुलिस की गड्डी सुरफे नूं चुक रही है, कुछ खून दियां बूंदां चुपचाप सड़क ते पईआं ने। अज तों भी चुप हो गया सुरफे, तेरा गला खराब हो गया सी, बहुत ज्यादा सिगरेट तंबाकू की वजह नाल या फिर किसी होर कारण नाल तू भी बेसुरा हो गया सी। याद आ तैनूं B- देना पिया सी, तेरी आवाज लगातार कमजोर पैंदी गई।

सॉरी प्रा, शायद मेरे बोलने का तरीका गलत सी। सॉरी। लंबा कॉरिडोर, दोनों पासे दीवार ते लगियां नेम प्लेट्स, अनजाने अनपछाते ना, कोई भी नहीं जड़ा जड़ा हस के प्यार नाल कहंदा, कैसे हो जगमोहन पा, की हाल है थोड़ा जगमोहन सर।

जगमोहन, जगमोहन जिसने 34 साल आकाशवाणी दे ड्यूटी रूम विच जिदी आज कोई पहचान नहीं, एक अजनबी, एक अनजाना, एक अनपछाता जगमोहन, कोई पहचान, जगमोहन 34 साल।

नाम जपो मेरे साजन सहना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़े पाग गुरमुख हर लेना। ए फरमान चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारित है। आप जी फरमाउंदे ने कि हे सज्जन मित्रो, उस प्रभु दा नाम जपो। उस प्रभु दे नाम तो बिना होर कोई ऐसा नहीं है जो सहाई हो सके। पर प्रभु दा नाम वड्यां पागा नाल ही जपया जा सकता है। इस वास्ते अकाल पुरख दी पूरन दृष्टि दी लोड़ पासदी है। राग तनासरी विच साहिब श्री गुरु रामदास जी अपने मन नूं संबोधित हुंदे होए फरमाउंदे ने, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना। सरवण करदे आं भाई चरणजीत सिंह ते उनां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। आप जी सरवण कर रहे सो भाई चरणजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस दे ही पाई। होर भी फरमान है, पजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो।

0: जाते भगत राम की पावै जम को त्रास हरै। प्रभु जी अपने भगतां अते दीना दुखियां दे संकट ते दुखड़े निवृत करदे हन। इसे लई भगत जन प्रभु नू भगत वछल करुणामय दीन बंधु दुख पंजन पै हरन तरन तारन पतित उदारन आख उस्तत करदे हन। उस्तति ही भगती है ते आद जुगात तो प्रभु जी भगतां दी रक्षा करदे आए हन। राग मारू विच भगत नामदेव जी बंदगी करन वाले दी वडियाई बयान करदे हन। पुराणा विच आईयां विभिन्न भगतां दीयां साखियां दे हवाले नाल ओ भगतां ते भगती दे गुण गाउंदे हन। अमरीक नूं नाम सिमरन कारण प्रभु जी ने निरपैता दा उच्चा दर्जा बख्शिया ते दुरबासा उसदा कुछ ना विगाड़ सकिया। पपीखन नूं राज दे के वड्डा करना भगत सुदामा जी नूं ठाकुर जी द्वारा नौ निधियां मिलना ध्रुव भगत नूं अटल पदवी मिलनी हरनाकश दा नाश करके भगत प्रहलाद दी रक्षा करनी सब मिसालां भगती दी महिमा नूं ही तां दर्शाउंदियां हन। भगत दी परिभाषा भगत नामदेव जी इउं करदे हन। राजा राम जपत को ना तरयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परयो। प्रकाश रूप परमात्मा दे नाम सिमरन द्वारा बेअंत जीव तरे हन। साधे होए मनुखां दी संगत विच गुरु उपदेश नूं दृढ़ करन वाले दा नाम ही भगत जन हो जांदा है। ए हर जी दी वडियाई है कि ओ दुष्टां दा अंत करदे हन ते भगतां दी पहज रखदे हन। गुरु जी दे सन्मुख रहन वालियां नूं भगती दीयां बरकतां दी सोझी हुंदी है। मायक भरम भुलेखियां विच भटकदे भगतीहीन मन दी मत पिछे लग जन्म अजाई गवा लैंदे हन। भगतां दी सोभा जुगा जुगा तीक हुंदी है। इस सोभा नूं कोई भी मेट नहीं सकदा। भगतां दी महिमा दा गुण गान गुरु जी इउं करदे हन। भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूँ तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विदाता। गुरबाणी विच करम कंडी भगती नूं रद्द करके प्रभु दी प्रेम भगती लई प्रेरणा है। तनासरी राग विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी बचन करदे हन कि जूना दी पटकन उपरंत मिले अनमोल मनुखी जीवन विच प्रभु भगती ही सर्व उत्तम है। वेदां शास्त्रां दी पढ़ाई तीर्थां दे इशनान नाम विहूने कर्म कांड आदि मन नूं विकारां नाल भर मैला करदे हन। विकार भरम नूं वधा अग्ञानी बनाउंदे हन। भरम मुक्ति नाल ही प्रभु प्रेम दी लगन लगदी है ते जीवन यात्रा सफल हो जांदी है। सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा। भगती विहूने जीवन विच मनुखी जीवन दे अमुल्ले ते दुर्लभ अवसर नूं भुला जीवन देन वाले नूं ही भुल जांदा है। नौवें गुरु जी अजेहे जीवन नूं पशु समान आखदे हन। एक भगत भगवान जय प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। इसे लई शेख फरीद जी बंदगी दी खैर मंगदे हन। गुरु अर्जन देव जी सतगुर पास बेनती करदे हन कि प्रभु जी भगतां दी टेक हो संतां दा आसरा हो नाम दा आधार बख्शो। आसा राग विच गुरु अमरदास जी बख्शिश करदे हन। भगती दी सार ना जानन वाले मनमुख हन हंकारी हन। उन्हां ने जन्म रूपी बाजी हार लई है। भगती करन वालियां दे सफल जीवन लई असीस शब्द हन हर हर नाम जन की पत होए सफल तिना का जन्म है तिन माने सब कोई।
1: भगत बिन बिरथे जन्म गयो ए वार्ता सुना रहे सन भुपिंदर कौर। आओ हुण सरवण करदे आ भगत कबीर जी द्वारा गौड़ी राग विच उचारित इसे रचना।

बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कही न सच रहो। भगत कबीर जी द्वारा उचारित इस रचना का गायन किया सी भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी।
1: इस भजन के नाल भक्ति संगीत है प्रोग्राम इत ही खत्म होता है। डिटेल दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वेले तड़के दे 4 बज चुके ने। आओ हुण तुहानूं लै चलदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर, जिथे तुसी शब्द कीर्तन दा सदा प्रसारण सरवण करोगे।

अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लिहियो गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो पर बंस जगत जस संचर्यो तो कवन कहे श्री

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिहत कसामंदी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन।

हे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हे तसीस दिते बंद बंद कटाए कोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आ रहा।

अज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान।